0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: मैं अपने पति तो बगैर जीवांगी नहीं, अपने प्राण त्याग देवांगी जे तू मेरे पति नू मार दिता है। इस करके मैं हुण जींदी नहीं रहांगी, अपने प्राणा नू त्याग देवांगी।
1: तोहे गहाए आप मर जाऊं,
0: तेनू मैं पकड़ा देवांगी ते आप मर जावांगी अपने पति तो बिना।
1: नह पर पुरख अंग संग लाऊं,
0: पर पराए पुरुष दे नेड़े नहीं जावांगी मैं, पर पुरुष दी संगत नहीं करांगी।
1: इते आदिक ऊचे बच टेरत,
0: इस तरह बीबी रजनी उची उची ए रौला पा रही है, दूरों ही लागे नहीं आ रही, दूरों दूरों ये गल कह रही है उची उची। जदों इहदे ऐसा बीबी राज कौर ने उची उची रौला पाया है।
1: सुन गन लोक मिले तिन हेरत,
0: फिर जदों लोकां ने होर मनुखां ने ये गल झगड़ा सुनिया, उची उची रौला सुनिया, सारे सुन के ते फिर इस बेरी हेठ आ गए हम जिथे ये झगड़ा हो रहा दोनों पति ते पत्नी दा, उस पिंगले दा ते इस बीबी राज कौर दा। जो सारे लोग कठे होके इथे आए हन,
1: दोनों निज निज प्रथा सुनाई,
0: उन्हें सारे कतर हुए लोगों नू इन्हें दोनों ने आपो अपनी विथ्या सुनाई है। बीबी राज कौर ने दसिया कि मेरा पति पिंगला है, मैं उन्होंने उदी टोकरी ते रख के गई हाँ, ये सारा कुछ उन्हें वरतान सुनाया कि मैं, लेकिन हुण आई हाँ तो मेरा पति इन्हें मेरे ते मैनू प्राप्त करने वास्ते ये दिल का बेईमान है, ये बंदा जिन्हें मेरे पति दी कत्ल कर दिता है, गाड़ी से ये जेड़ा पिंगला है इन्हें सारी विथ्या उतों की जो जितना प्रताप परमात्मा वाहिगुरू ने कौतक वरत्या, ये सारा उन्हां लोकां नू उन्हां मनुखां नू सुनाउणा कीता दोनों ने।
1: सुन कर किहे ना समझ नर आई,
0: जदों इन्हां दोनों ने आपो अपनी विथ्या सुना दिती है ते जेड़े वो लोग आए हन, जेड़े मनुख आए हन इकट्ठे हो के इन्हों का झगड़ा निबेड़न वास्ते, फिर उन्होंने कुछ समझ नहीं आती कि होया की है, उन्होंने वस की गल नहीं सी कोई एडा वड्डा मसला सुलझा देंदे। जो उन्होंने ये गल सुनी दोनों के पक्ष सुने हैं तो, लेकिन उन्होंने समझ नहीं आ रही कोई भी की निर्णय करिए की फैसला करिए। जो उन्होंने समझ नहीं आई
1: तब सब है न तेन को समझावा,
0: वह कहें कि भाई तू कोई होर ना साढ़े बस की गल है कि तू समझा दिए फैसला कर दिए, तो ना किसी होर की बस की गल है कि ता दोवे जीवन का फैसला करवा देना, किसी के बस की गल नहीं है।
1: क्यों तुम झगड़ा हो बाद उठावा,
0: पर तुम इन्ना झगड़ा ना करो, इन्ना बवाद ना करो आपस विच दी,
1: अपर ना कर है न्याऊ तुम्हारा,
0: ता न्या जेड़ा होर कोई नहीं कर सकता, तो फिर कौन कर सकता हूँ दसते हैं उन्हों बीबी रजनी ते इस पिंगले नू। ये मरुख कहें कि भाई ताडा न्याय जेड़ा कोई भी नहीं कर सकता, साढ़े वास की नहीं गल किसी वास की गल नहीं हैगी। हाँ जी,
1: श्री गुर अर्जन यहाँ उदारा,
0: इस करके इस स्थान तो थोड़ी दूरी पर धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी जे गरीब नवाज हैं, ऐसे सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी जो थोड़ी दूर इतों जिथे सतगुरु जी जो संतोख सर वाले सरोवर की सेवा करवा रहे सतगुरु जी उत्थे हन।
1: अंतर जामी सो सब जन है,
0: धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर बिछानत, वह सारे दिलों की जानते हैं, वह सतगुरु जी जानते हैं, इस करके
1: कर निर्णय सच बाक बखान है।
0: धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी ता निर्णय करके सच ताडे सामने दस देंगे। तो जदों ऐसे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी निर्णय करके आप नूं समझा देंगे,
1: तिन को कहियो साच ही जनी है,
0: इस करके ऐसे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी का बचन सच करके जान लियो, क्योंकि जो सतगुरु जी कहते हैं ना वह तीन काल सच है, तो जो सतगुरु जी निर्णय करे न्याय करे उन्हें सुन के तो उन्हें मनना करो,
1: नह संशय दोनों बच मनी है,
0: इस करके दोनों जाने बिना शंके तो। धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी का पावन पवित्र बचन सतगुरों का पावन पवित्र उपदेश ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਕਰਿਓ।
1: ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਰਿਆ ਔਰ ਹੁਲਸਾਈ,
0: ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
1: ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਮ ਸੰਸੈ ਜਾਈ,
0: ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
1: ਤਬ ਦੋਨੋਂ ਕੁਛ ਨਰ ਲੈ ਸਾਥ,
0: ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
1: ਗਏ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਨਾਥ,
0: ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਿਮਾ

सो कहो टल गोर सेविय अहन सहज सुबाय दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाय सिफत खसाम भी नूर अर सह कुर सह चटी है तो डिठे सचे पात सह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा।

इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहे है जन्म दर जन्म, एक खोज रहे है लभ रहे है तलाश कर रहे है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहिंदे ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे चे, और तृप्ति तो बिना इसनु होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा है, तृप्ति चाहिदी है, और रजे होए नु ही राजा कहिंदे ने। ये राजा होना चाहिदा है, ये राजा बनना चाहता है, ये महाराजा बनना चाहता है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे आज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कढ़ रहे है, धन कढ़ रहे है, और लंबे समय तो इस दी कोख विचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनु राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहन वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा कर दे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे ओ राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियां नु कहा सी, कफन चो मेरे हथ बार ही कढ़ने, ताकि जगत नु पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौट दे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं त्रिपत हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। एक गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहे ने, ए राजा है, ए महाराजा है, ए बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे बहुत कुछ लभया, लोहा लभया, तांबा लभया, कोयला लभया, और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनु सोना लभया, चांदी लभया, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भड़े, इसने अपना तन सोने दे गहनियां नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते, और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त, इस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कम्मां दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिया मनुख नू रजा नहीं सके, त्रिपत नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़िया, और उसने सागर दे पानी नू छाणिया, चप्पे चप्पे नू छाणिया। बड़ा कुछ इसनू सागर तो भी मिलिया और मिल रहा है, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये त्रिपत नहीं हो सकया, फिर भी ये अपने

0: गुरु राज अब चले अटल, आद पुरखे फुरमायो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर आई भट्टां दी बाणी और उस दा एक पावन पवित्र सोईया है। साडे देश दे धार्मिक ऋषि मुनिया ने युगां दी बकायदा वंड कीती है और कहिंदे ने चार युग ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इंज कह लईए ये चार क्लासां ने, या कह लईए ये चार स्कूल ने। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, बच्चा है, थोड़ा जिहा प्रौढ़ होया है, जवान होया है, अधकड़ होया है और बुजुर्ग हो गया है, बुढ़ा हो गया है। तो बच्चे लई होर स्कूल है, वड्डे लई होर स्कूल है, नौजवान लई होर स्कूल है। जैसे सारे स्कूलां विच पढ़ाण वाले ते मास्टरी कहलांदे ने, अध्यापक ही कहलांदे ने, टीचर ही कहलांदे ने, लेकिन फिर भी बड़ा अंतर है। जो प्राइमरी नू पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, जो मिडिल क्लास नू पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो हाई स्कूल विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो कॉलेज विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है। लेकिन फिर भी उना दी जानकारी, उना दे प्राण दे तौर तरीकियां दे बड़ा भारी अंतर है। नाम एक है, काम एक नहीं। उना दी जिम्मेवारी समय दे नाल और स्कूलां दे नाल वद्दी। सतयुग एक ऐसा युग से जिसनों कह दईए इत सिर्फ नर्सरी दी क्लास है, सिर्फ इत्थे आना है, बस थोड़ा जिहा बैठना है, उठना है, चले जाना है, समा पास करना है। मनुखता दा आद काल जिसनों सतयुग कहिंदे ने कोई बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां नहीं सन। आखरिक मासूम बच्चे देते कादियां जिम्मेवारियां, केड़ियां जिम्मेवारियां। अजे वो जिम्मेवारियां दा बोझ चुक नहीं सकदा, जिम्मेवारियां निभाण दी अजे उसकी समर्था नहीं है। वो ते सर्व समा पास कर रहे है, वक्त पास कर रहे है। तो वक्त पास करन लई कोई खिडौने चाहिदे ने, तो इस तरह दे नर्सरी दी क्लास विच खिडौने रखे जांदे ने। इंज कह लिए बच्चे खेडन लई आंदे ने, सिर्फ खेडन लई। छोटे छोटे बच्चे आए ने सिर्फ खेडन लई। अध्यापक एक चाहिदा है, एक टीचर चाहिदा है, ये बच्चे बस ढंग नाल खेड सकन, सारियां नू खिडौने मिल सकन और थोड़ा जिहा विश्राम कर सकन, फिर अपने घरां नू जान, समा पास करन। सतयुग दा दौर ऐसा सी जैसे मासूम बच्चा छल कपट तो रहत है, वैर विरोध तो रहत है और वासना अहंकार तो भी रहत है। बड़ी समान दृष्टि है, वितक्रिया तो भी उच्चा है। तो सतयुग मनुखता दा आद सी, अजे जन्म ही होया सी, बहुत सारियां कोई इसदियां लोड़ा नहीं सन, ते बहुत लंबी चौड़ी समझ भी नहीं सी। समझ होवे ता समझ नूं विकसित करन लई कोई समझाण वाला चाहिदा हुंदा है। अजे ए हालत इस युग दी, इस बच्चे दी नहीं सी। इस वास्ते कहिंदे ने एक बोना अवतार, एक छोटा अवतार, बावन अवतार आया। सतजुग तय माण्यो छलेओ बल बावन पायो। लंबी शिक्षा दी, लंबी पढ़ाई दी लोड़ नहीं सी, सिर्फ देख रेख करनी सी। ए ढंग नाल खेडन, ए ढंग नाल बैठन, ए खिडौणिया नू तोड़न ना, सिर्फ खेडन, तो बस इतनी ही देख रेख करनी सी। यही कारण है कि सतजुग नू छाणीए पढ़िए कोई बहुती संघर्ष वाली जिंदगी नहीं सी, और बहुत कोई उसारू कम भी नहीं सन। पहाड़ां दी कंदरां दे चलोकी रहिंदे सन, रुखां दी छां ही उनां दे महल सन, जंगल दे फल फूल खा लेने, कंद मूल खा लेने उनां दी खुराक सी। दरख्तां दी छाल नाल अपना तन ढकन लेना या नगन रहना, बस ए उनां दा पहरावा सी। जमीन ते सो रहना ए इना दा बिस्तर सी। और एक इलाके च लोड़ां दी पूर्ति नहीं होनी, दूसरे चले गए, तीसरे चले गए, चौथे चले गए, इस तरह भ्रमण करदे रहना। नहीं दरख्तां नालों कोई फल फूल मिले तो किसे जंगली जानवर दा शिकार करके उसका मांस खा लेना, बस यही जीवन सी आदि मनुख दा। आदवासी आदि मनुख किसी भी देश में तुसी चले जाओ इसी तरीके नाल जीव दे सन। और आदि मनुख उन्हां नू अज भी असी कहिंदे आं तो मैज इस आधार ते कि कईयां ने आदि मनुख वाला रहन सहन खान पान अजे भी नहीं छोड़िया। अजे भी जंगलां दे च, अजे भी नगन, अजे भी जानवरां दा शिकार करके खाना, अजे भी दरख्तां दे पत्तियां नाल अपने तन ढकणे, अजे भी पशुआं दी खल नाल अपनी चोली बनाने, अपना दामन ढकना, ओही पुरानी तर्ज़े जिंदगी। तो किसे बहुत वड्डे अवतार दी लोड़ ना पई। समा लंघदा गया, ए गोड़ियां दे भार चलन वाला ए बच्चा, खिडौणियां नाल खेडन वाला ए बच्चा थोड़ा वड्डा होया, तो इसनू तहजीब सिखानी सी, इसनू उठना बैठना सिखाना सी, इसनू बोलना सिखाना सी, इसनू पहनना सिखाना सी, इनू खाना पीना सिखाना सी, जिंदगी दी हर तरह दी मर्यादा इसनू देनी सी। तो फिर आ गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ए प्राइमरी स्कूल दे अध्यापक मर्यादा सिखानी है, उठना बैठना सिखाना है। कुछ राजनीति शुरू हो गई सी, परिवारिक जिंदगी शुरू हो गई सी, कुछ अर्थव्यवस्था दा पसारा भी आरंभ हो गया सी, तो मर्यादा बनानी लाजमी हो गई सी। तो पुत्र दी की मर्यादा है, पिता दी की मर्यादा है, राजे दी की मर्यादा है, प्रजा दी की मर्यादा है, गुरु दी की मर्यादा है, शिष्य दी की मर्यादा है, छोटे भरा नु किस मर्यादा च रहना है और वड्डे भरा ने किस मर्यादा दी पालना करनी है, इस तरह दे समाज दी मर्यादा, नीति दी मर्यादा, धर्म दी मर्यादा बनाई गई। और जिस अवतारी पुरुष द्वारा बनाई गई उनु आख्या गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सहजे सहजे आखिर बच्चा वड्डा हुंदा है, समय दे नाल विकास जारी है। जैसे जैसे तुसी पिछे जाओगे मनुख इतना विकसित नहीं सी। इते देखदे आ देखदे आ बहुत भारी विकास हो गया है। और मनुख किथे दा किथे जा पहुंचे है। नगन रहिंदा सी पर अज हजारां तरह दे कपड़ियां दा जन्म दाता है। एक थां तो दूसरी थां ते ए पैदल जांदा सी, फिर पशुआं दी असवारी इसने कीती, फिर बैल गड्डी बनाई। पर अज ते मनुख आवाज तो भी तिखे हवाई जहाजां दा मालिक है। अज ते 24 घंटे च सारी पृथ्वी दा चक्कर ला सकदा है। ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤਲੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਇਸਨੇ ਫਲਕ ਬੋਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭੋਜ ਪੱਤਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਦਮੂਲ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟੀ ਪਦਾਰਥ। ਗਰਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਮਾਰੀਏ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਖੁਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਖੁਨ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾਖੁਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਤੋ ਨਾਖੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਰੀਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਖਾਣਾ, ਇਹੀ ਇਸਦੇ ਜੋ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਬਿੱਲੀ ਇਤਿਆਦਕ ਦੇ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਨੇ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬਰਛਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਬਰਛੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਆਈ, ਬੰਦੂਕ ਆਈ, ਤੋਪ ਆਈ, ਟੈਂਕ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ। ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਗਰਸ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸਨੇ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੁਆਪੁਰ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ। ਆਪਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਬੂਲ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। उत्थे मर्यादा नू एक पासे रख दो। सियाणप आ गई, सूझ आ गई, समझ आ गई। आखिर मर्यादा ते मनुखता लई है, मनुख ते मर्यादा लई नहीं है। नहीं ते फिर सिर्फ मर्यादा ही बच जाएगी, मनुख ते खत्म हो जाएंगे, तो उस मर्यादा दी कौन पालना करेगा। मर्यादा है मनुख नू जिंदा रखन लई, मनुख नू सुखी देन लई, मनुख नू इंसाफ देन लई, मनुख नू न्याय देन लई। पर जिथे ए मर्यादा मनुख नू ही खा जाए, मनुख नू ही नष्ट करे, उत्थे श्री कृष्ण ने कहा हुण मनुख नू बचाओ, मर्यादा नू नहीं। कुछ सियाणा युग आया, गुरु नानक दी दुनिया ए कॉलेज दे प्रोफेसर ने, मनुखता बहुत सियाणी हो गई, ए सदी बहुत सियाणी सदी है, ए युग बड़ा सियाणा युग है। पुरानियां गल्लां नहीं ने, थोड़ा जिहा तुसीं पिछे चले जाओ, अपने दादे परदादियां नूं देखो, क्या इतने विकसित सन, क्या उतनी उन्हां कोल जानकारी सी, क्या इतनी उन्हां कोल सूझ बूझ सी। ज्ञान वधिया है, सियाणप वधी है, तो सियाणे नूं पणाण दा ढंग होर हुंदा है, इयाणे नूं पणाण दा ढंग होर हुंदा है। इयाणे दीआं किताबां होर आउंदीआं ने, सियाणे दीआं किताबां होर आउंदीआं ने, इयाणिआं दे उस्ताद होर आउंदे ने, सियाणिआं दे उस्ताद होर आउंदे ने। इयाणिआं नूं भी पढ़ाया जांदा है, सियाणिआं नूं भी पढ़ाया जांदा है। बड़ा सियाणा युग गुरु नानक दे सामणे सी, बड़े धर्म ग्रंथ विकसित हो चुके सन, मनुख बड़ा ज्ञानी विज्ञानी बनिआ, बहुत पक्खी इस दे कुल सूझ ते समझ, नवी तो नवीआं खबरां ए लैके आ रहा है मनुख अज दा। और जितनी सियाणप वधी कुदरती गल है, उतना अहंकार वधना सी। तो ए युग अहंकारी युग है। बहुत सुंदर वाक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच लिखे हुए ने, ते नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे भाव। मन नारद बन गया है, ऋषियां दे चों नारद नू बड़ा सियाणा मनिया गया है, बहुत सियाणा। हर ऋषियां दी महफिल विच उसका सन्मान, टुटियां नू जोड़ देना उदे कुल सियाणप है, और दो सियाणियां नू तोड़ के रख देना ए वी उदे कुल सियाणप है। बड़ी वड्डी सियाणप है जोड़ तोड़ दी, और जोड़ तोड़ उही कर सकदा है जिदे कुल जोड़न दी भी समझ होवे, तोड़न दी भी समझ होवे। नारद सारे ऋषियां दे सन्मानत, हर थां ते प्रगट और हर तरह दी खबर रखण वाला। ए युग सिर्फ हुण अपने घर दी खबर नहीं, जमीन दे चप्पे चप्पे दी खबर रखण वाला है। अज मनुख सारी दुनिया दी खबरां अखबार विच पढ़दा है, टेलीविजन ते देखदा है, रेडियो राही सुनदा है। बड़ा सियाणा ए युग है। गुरु नानक देव जी महाराज दे समय भी लोकी दूर दराज तक जान लग पए सन। सतगुरु आप भी नौखंड पृथ्वी दा जो है भ्रमण करके देश दे वापस लौटे सन। बड़ा भ्रमण, बड़ा भ्रमण। बर्मा विच गए, तिब्बत भूटान गए, फिर रशिया दा इलाका, अफगानिस्तान, ईरान ते सारा अरब। बड़ा भ्रमण गुरु नानक दा। युग बड़ा सियाणा हो गया, इसनू पढ़ाना सी, इसनू समझाना सी। तो समझान लगिया कुदरती गल है, इस दे अहंकार नू पहले मिटाना सी, इस दे अहंकार नू पहले दूर करना सी। इसे ही कलयुग विच महात्मा बुद्ध ने भी देखिया, सियाणा मनुख जरूर हो गया है, अहंकारी है, तो उसने बनाए भिक्षु, भिखारी, भिक्षु। दरअसल जद भिक्षा ही लेनी है तो मान तान वाली ते कोई गल है नहीं, अहंकार दी कोई गल ते हो ही ना। आखिर एक भिक्षु एक मांगत किस चीज का अहंकार कर सकता है, उदे कोल की हंकार रहेगा। मनुख दे हंकार नू मिटाण दी खातर भिक्षु महात्मा बुद्ध ने बनाए, पर ए सर्वव्यापी धर्म नहीं सी। अगर सारे भिक्षु बन जान सारे पृथ्वी दे लोग, तो फिर देण वाला कौन होवेगा? सारे मंगण वाले ने, इन्हां नू कौन देगा? कौन इन्हां दी झोली विच रसद पानी पाएगा? कौन इन्हां नू भोजन खिलाएगा? कौन इन्हां नू वस्त्र देवेगा? अगर सारे भिक्षु बन गए तो भिक्षु होना महात्मा बुद्ध दी देशना कुछ एक लोगां लई सी, सारिआं लाल लई सी, सारिआं लई ए लाभकारी नहीं सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने लंबी निगाह नाल देखिया कि सारे लाभ उठा सकन, कुछ खास चुनिंदा बंदे ही क्यों। जैसे एक कॉलेज होवे किसी शहर विच, तो उत्थे ढंडोरा पिट दिता जाए, कुछ घरां दे बच्चे इस विच पढ़ सकदे न, बाकी नहीं। बाकियां लई दरवाजे बंद, इत्थे बहुत वड्डी बेइंसाफी होवेगी। तो बौद्ध धर्म सारिआं लई नहीं सी। अगर सारे ही भिक्षु बन जान तो फिर कौन उन्हां दी झोली भरे, कौन भिक्षा देवे? और सारे ग्रस्त दा त्याग कर देन तो धरती ते चंद सदियां तो बाद सुन्नी हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, मनुखता ही मिट जाएगी, मनुखता ही खत्म हो जाएगी। तो गुरु नानक दी दृष्टि विच समूह ब्रह्मंड सी, सारे ब्रह्मंड दे लोकी सन। तो आपने शब्द दिता सिख, बड़ा निर्माण शब्द, बड़ी जिस दे गरीबी है, बड़ी विनम्रता है। सिख, मैं सिखना है, मैं सिखण नू तैयार हां, मैं सिखना चाहना और मैं कुछ नहीं जानना। इस तरह दे सारे जज्बात कठे होवन, इस तरह दिया भावनावां कठिया होन, ते कोई बनदा है सिख। जो आखे मैं बहुत कुछ जानदा, मैं बहुत कुछ जानदा, हंकारी होवेगा, सिख नहीं है। इस वास्ते सिख हंकारी नहीं हो सकदा और हंकारी सिख नहीं हो सकदा। इन्हां दोहां दा आपस दे संबंध नहीं है। गुरु नानक ने मनुख दे मूल रोग नू समझिया, हाँ मैं हाँ मैं ही हाँ और कोई नहीं। इस सदी दा मूल रोग, हमें रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना। मनुख दे कोल जड़ा बुनियादी रोग है अहंग हंकार। ये धार्मिक साधना करदिया भी खड़ा रहिंदा है, ये दान पुन दे राही भी प्रगट हो जांदा है, ये होर तरह तरह दियां साधना करदे होया भी गुणा दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है, औगुणा दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है, मिटदा ही नहीं अहंकार। अहंकार नूं मिटाउण दी इक्को ही औषधि गुरु नानक ने लभी, भी प्रथम तो ए कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा। आखिर अहंकार ते इत्थे ही टिकदा है कि मैं बहुत कुछ जानदा, मैनूं बहुत कुछ पता है। ते जद आखे कोई मैनू कुछ भी नहीं आउंदा और मैं कुछ भी नहीं जानदा, कम से कम सच बारे, जीवन बारे, परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो हंकार दे ते सारे आधार ही टुट गए। अहंकार जिना जिना कुर्सियां ते बैठदा सी, उते कुर्सियां ही सारियां टुट गईयां। उते जानकारी दी कुर्सियां ते बैठदा सी, मैं सब कुछ जानदा, मैनू हर पक्ष दी समझ है, मैनू सब कुछ पता है। सिख, मैनू कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानदा, और जीवन दे किसे पहलू दी मैनू कोई सूझ नहीं, मैनू कोई समझ नहीं, ना जिंदगी दी ना जिंदगी नू देण वाले दी। जद कोई ऐसा कबूल करदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे आधार मिट जांदे ने, उस दे टिकण दे आसन जिहड़े ने ओह टुट जांदे ने, और सिख वास्तविक एक मनुमरता दी निर्माणता दी मूर्ति बन के उजागर होंदा है, सामने होंदा है। जैसे सारे औगुणा दा आधार गुरु नानक ने अहंकार नू मनिया, सारे गुणा दी बुनियाद विनम्रता नू मनिया। मिठत नीवी नानका ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਠਾਸ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਜਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀ ਸਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ ਉਹ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਮਲ ਹੈ ਇਤਨੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੋਮਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਇਤਨੇ ਹੀ ਬੋਲ ਲਚਕਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਫਿੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਪਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਖਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਹੈ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਨੁੱਖ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਧਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਣ।
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ, ਫਰਨਡੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: रामचंद जी राज के अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों से ही जागता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वक्त के अवतारी पुरुष ने, उत्थे वो शरीर शास्त्री भी ने। अतिन ने पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नूं कौन जानदा है कि जो पुरख का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष दे कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है तो उसके अंदर मां की अंश भी है, पिता की अंश भी है, पुरुष के कणु भी हैं और नारी के कणु भी हैं। कहने ने पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके कि उसके अंदर पुरुष के कण से पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध हम और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी के कण से पूरे ने, पुरुष अधूरा है, अर्ध हम। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल नूं ते तस्लीम किया कि बाहर दी ए नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल सी, उसने यह गल अंदरों ते तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी दे अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष करके नारी अर्ध अंग है और नारी करके पुरुष अर्ध अंग है, अर्ध अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ध अंग बाल की कशिश पैदा करता है, पुरुष दे अंदर नारी की कशिश, नारी दे अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जी संपूर्णता है ये पशुओं की तरह ना हो, मनुख आकर मनुख है, ये को सोचनी है, ये को विचार ने, तो इस समाजिक रसम को धर्म के दायरे में चलाने की आग्या हो, ताकि रिश्तों में पुख्तगी हो, रिश्तों में पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन और जिस रिश्ते दे विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जाओ, मोर गुरबाणी दी लगे। और इसे तरीके नाल प्राचीन ऋषि मुनि धर्म दी मोर ला के इस अर्ध अंग दी संपूर्णता करदे सन, ते इसका नाम उन्होंने रखिया सी जिवा। गुरमत विच ए नाम रखिया गया है आनंद कार, खुशी दा एक कम, क्योंकि अर्ध अंग संपूर्ण हो रहा है। ऐसी जेरी मर्यादा बनाइए परिपूर्ण परमात्मा ने हाथ बनाई, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नूं भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नूं भी ते नारी नूं भी अनेकता विच वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भरा भी है, एक पति भी है, एक पुत्र भी है, एक पड़ोसी भी है, एक दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की बहन भी है, किसी की बहन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है। और फिर किसी भी इसे पत्नी। सारे रिश्तों में पकियाई होवे, पवित्रता होवे, इस वास्ते विचोड़ा चाहिदा सी। तो विचोड़ा गुरु गुरु मोड़ लांदा है कि मनुख पुरश भराव बने ते चंगा बने। लोकी मान करन के भराव होवे ते ऐसा होवे, ये पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने, और ये पुत्र बने ते ऐसा कि मां बाप फकर करन, ये दोस्त बने ते ऐसा कि दोस्त उससे मान करन, और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने, उसकी खुशी बने। हूबहू इसे तरीके नाल इतनी ही जिम्मेवारियां ने बच्ची दी, कि बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन, कि साडे घर का बिछड़िया होया फुल सी पहले महक वंडी पेके कर दे, हूं महक वंड रही है सौरे कर, और मां बाप की खुशी बनी रहे, महक फैल रही है खुशबू फैल रही है। एक पत्नी बने आदर्शवादी, एक बहन बने महान दया मान करन, बहना मान कर। सारे रिश्तों में पकियाई से पुख्त ही लाजमी है। एक पत्नी होवे तो ऐसी ही कि सारिया ही खुशियां का सोमा बन जाए पति और पति मान कर। तो इस लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे, किसी महान नाल संबंध जोड़े, और इन्हों दो आत्मावान के संगम, इन्हों दो शरीर के संगम दे कोई मदद चाहिए है। जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की असं देखते हैं, दोहां नू जोड़ने तीसरा चाहिए, दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए है, दो कपड़िया जोड़ना है, कोई धागा चाहिए, दो इटा जोड़ना है, तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है, दो लकड़ा नु जोड़ना है, श्रेष्ठ किल कुछ ना कुछ जो है चाहिए है, दो दिलों नु जोड़ना है, इतने दो दिल जोड़ने, दो विचारा नु जोड़ना, दो ख्याल नु जोड़ना, तो थोड़ी से चाहिए है। बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नु इक करदा, दोहां ते मोर लांदा है। ते हुण मैं दो मिनट आपदे होर लवां ते समाप्ति करा। रिश्ते दुनिया दे दो तरह के, खून दे रिश्ते, ख्यालां दे रिश्ते, विचारां दे रिश्ते, मन दा रिश्ता। जिहड़े खून दे रिश्ते ने, इन्हां दीआं प्रणालियां तिन ने, नानके दादके सौरे। बे खून दा रिश्ता दादकियां नानकियां ते फिर सौरियां, पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नूं जिथों जन्म मिलदा है पति पत्नी तो, ये रिश्ता खून दा रिश्ता नहीं है। बच्ची किसे घर दी, बच्चा किसे घर दा, खून ते इक नहीं है। किस तरह किया जा सकता खून, ये खून एक नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने भी नहीं मने। सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलों की सांझ है, विचारों की सांझ, एक जो दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। महाराज कहने ने असी पति पत्नी उसनू कहने, विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो, ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने। पर इतनी गल स्पष्ट है, जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार का जन्म उथे ही, वरना नहीं। जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार उथे पैदा होता है, और जिथे प्यार है उसते एतबार भी आता है, एतबार भी मनुख का उत्ते नहीं जाता। और जिथे एतबार है कहने सदाचार का वासा भी उथे ही है, और जिथे सदाचार है करतार दियां सारियां बख्शिशां भी उथे, करतार दियां सारियां न्यामतां भी उथे ने। आप सारे सियाणे बैठे हो, बच्ची बच्चे भी ऐ भी दोणे सियाणे ने। ये रिश्ता विचारां दी सांझ दा है, ख्यालां दी सांझ दा है। एक जो दोए मूर्ति ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੌ। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੌਰੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋਏ ਮੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਸੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਨ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਸੀਏ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਸੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੋਤ ਇੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਕੀ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਨ, ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪ ਦੀ ਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਗੜਾਉਣਗੇ। ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी

0: दृष्टि ता
1: नानक पाप पन नहीं ले पा
0: निर्धन को धन तेरो नाव
1: निथा मैं कौ नाव तेरा था
0: नमाड़ी को प्रभ तेरो मान
1: सगल घटाकर देवो दान
0: कर्म करावन हार स्वामी
1: सगल घटाके अंतर जामी
0: अपनी गतमत जानो आपे
1: आपन संग आप प्रभ राते
0: तुमरी उस्तत तुमते होए
1: नानक अवर न जान सकोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हरिया
0: सगल उद्यम में उत्तम भला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल वाणी में अमृत पानी
1: हर को जसन रसन बखानी
0: सगल थान ते उत्तम थान
1: नानक जे कट वस हर नाम श्लोक
0: निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभु सदा संभाल
1: जिनकी आतिस जीत रख नानक निभही नार अष्टपदी
0: रमैया के गुण चेत परानी
1: कवन मोहते कवन दृष्टानी
0: जिन तू साहस सवार सिंगारिया
1: गर्भ अगन में जिने उबारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध
1: पर जो बन भोजन सुख सूद
0: बिरद पया ऊपर साख सैन
1: मुखे पया हो बैठ को दैन
0: एहो निर्गुण गुण कुछ न बुझे
1: बख्श ले हो तो नानक सी जय
0: जय प्रसाद धार ऊपर सुख बस है
1: सुत प्रात मीत बनता संग हसै
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव के मुला
0: जय प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल समग्री संग सात बसा
0: दीने हस पाम करन नेत्र रसना
1: इसे त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दोक मूड अंध व्यापे
1: नानक काड लियो प्रभ व्यापे
0: आदि अंत जो रखनहार
1: जैस्यो प्रीतन करे गवार
0: जापी सेवा नव नित पावे
1: तास्यो मूडा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सर सदा हजूरे
1: ताको अंधा जानत दूरे
0: जापी टहल पावे दरगाह मान
1: तसे बसारे मुग्धा जान
0: सदा सदा इह भूलन हार
1: नानक रखन हार अपार
0: रतन त्याग कौटी संग रचै
1: साच छोड़ झूठ संग मचै
0: जो छडना सो अस्थिर कर मानै
1: जो होवन सो दूर प्राणे
0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
1: संग सहाय तिस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे धोए
1: कर तप प्रीत भसम संग होए
0: अंध कूप में पतत बिकराल
1: नानक काड लियो प्रभु दयाल
0: दूत पशु की मानस जात
1: लोक बचारा करे दिन रात
0: बाहर एक अंतर मल माया
1: शब्द नाहे कश करे छपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान इशनान
1: अंतर व्यापै लोप समान
0: अंतर अगन बाहर तन स्वाह
1: गल पात्र कैसे तरे अथा
0: जा कै अंतर बसे प्रभु आप
1: नानक तेजन सहज समाज
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
1: कर गए ओढ़ निभावे
0: कहां बुझारत बुझै डोरा
1: जिस कहिया तो समझै पूरा
0: कहां बिसन पद गावे गोंग
1: यतन करै तो भी सुर भंग
0: कह पिंगल पर्वत पर भवन
1: नहीं होत उहा उस गमन
0: करतार करना मैं दीन बेनती करे
1: नानक तुम्हारी कृपा तरै
0: संग सहाई सो आवे न जीत
1: जो बराई ता स्यो प्रीत
0: बलुआ के गृह भीतर बसै
1: अंत केल माया रंग रसै
0: दृढ़ कर्मा ने मरे प्रतीत
1: काल न आवे मूड़े चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ बकार महा डोब त्रोह
0: क्याहूं जुगत बिहानी कई जन्म
1: नानक राख लिहो अपन कर कर्म
0: तू ठाकुर तुम पै अरदास
1: जीव पण सब तेरी रास
0: तुम मात पिता हम बारिक तेरे
1: तुमरी कृपा में सुख घनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: उचे ते उचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी
1: तुमते होए सो आज्ञाकारी
0: तुमरी गत मित तुम ही जानी
1: नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक
0: दिन हर प्रभ छोड़ के लागे आन सुहाई
1: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी
0: दस बसूले पाछे पावे
1: एक बस्त कारण बिखोट गवावे
0: एक भीना दे दस की हिरले
1: तो मुड़ा को कहां करे
0: जिस ठाकुर से ना ही चारा
1: ठाको की जय सद नमस्कार
0: जापे मन लगा प्रभ मीठा
1: सर्व सुखता हु मन बुठा
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया
1: सर्व सुख नानक चल पाया
0: अगंत शाह अपनी दे रास
1: हाथ पीत बरते अनंत उलास
0: अपनी ईमान कश बहो शाह होले
1: अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रतीत आप ही घोवे
1: और उसका विश्वास न होवे
0: बस्ते से आगे रखे
1: की आज्ञा मन ने मथ
0: उसते चौगन करे निहाल
1: नानक साहिब सदा दयाल
0: अनक भांत माया के हित
1: सरबर होवत जान अनेत
0: बिरख की छाया से रंग लावे
1: ओ बिन सह ओ मन पछतावे
0: जो दिसे सो चालन हार
1: लपट रहे होते अंधे अंधार
0: घटाऊ से जो लावे ने
1: ताको हाथ न आवे के
0: मन हर के नाम की प्री सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया
1: मिथ्या हो मैं ममता माया
0: मिथ्या राज जोगन धन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या
1: मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान
1: मिथ्या आप से ऊपर करत गुमान
0: सिर भक्त साध की शरण
1: नानक जप जप जीव हर के चरण
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे
1: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे
0: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रिया रूपाद
1: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद
0: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे
1: मिथ्या मन पर लोभ लबावे
0: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा
1: मिथ्या पास लेत मिकारा
0: बेहूदे मिथ्या सब भये
1: सफल दे नानक हर हर नाम लये
0: मिथ्या साक्त की आरजा
1: ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੁਚਾ
0: ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਰ ਅੰਧ
1: ਮੁਖ ਆਵਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ
0: ਬਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਵਿਹਾਈ
1: ਏਕ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ
0: ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ
1: ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ
0: ਧਨ ਧਨ ਤੇਜ ਦੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ
1: ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ
0: ਰਹਿਤੇ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ
1: ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਡ ਲਾਵਤ
0: ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ
1: ਬਾਹਰ ਭੇਕ ਨ ਕਾਹੋ ਭੀਨ
0: ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨ ਕਰੈ
1: ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰੈ
0: ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭਾਪ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ
0: ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ
1: ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪੁਰਾਤਾ
0: ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ
1: ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮੰਨੈ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ
0: ਪਾਪ ਸਿਆਨਪ ਸਕਲ ਤੇ ਰਹਿਤ
1: ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਾਹਤ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਲੜ ਲਾਏ
1: ਸ਼ਾਂਤ ਅਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪਨ

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਗਤ ਔਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੋਤ ਸਲਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਭੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹੇ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਓ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਸ਼ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਸ਼ੂ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਤ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਬਖਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਭੇਖੈ ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ जल में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यो बसदा को खुदै को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रभु आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभु संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: अत्रिया रूप न देखे नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुने काहू के निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्रिय जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्ण प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म में सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जोन न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख में जाने स्थूल
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उरतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कित न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर का परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोची परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हिता वै
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हक तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित कर रखे तैसा तन्ना
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सो ही पन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक
1: उस्तत करहे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट पै तीर्थ वासी
0: कई कोट बन प्रमेय उदासी
1: कई कोट वीर के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट पै अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अपिक आत्म ने कोर
1: कई कोट पर दर्प को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमाहे
1: जित जित लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पात्र बृक न बजाए
1: कई कोट पवन पानी में संतर
0: कई कोट देश भू मंडल
1: कई कोट शशि असुर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र
1: सगल समग्री अपने सूत धारे
0: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस ताम सातक
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र
1: कई कोट की रतन समुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की चिर दीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निरपिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृकाच
1: साते नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिप्त रे प्रभुर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहुत जोनी फिरे
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले थक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मा चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखे
0: नानक सब किस प्रभ के हाथे
1: कई कोट भई बैरागी
0: राम नाम संग तिन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोज अंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास
0: जिनको मिलियो प्रभ विनास
1: कई कोट मांग है सत्संग
0: आप ब्रह्म तिन लगा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा धन धन
1: कई कोट खानी अरखंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जगत की न विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत
0: सत्यो है प्रभ माहे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: जिनहो वत्या तम प्रगास
1: कई कोट तत् के देते
0: सदन हर एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भय सद सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गाव है
0: आत्म रस सुख सह समावे
1: अपने जन को साथ साथ समारी
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए अष्टपदी
1: करन करावन करने जोग
0: जोत सभावे सोई होग
1: फिर मैं ताप उताप नहारा
0: अंत नहीं किस पारा वारा
1: हुक्मे धार अधार रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अनक रंग प्रकार
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई
0: नानक सब में रहा समाई
1: रब भावे मानो गत पावे
0: रब भावे ता पात्र त्रावे
1: रब भावे बिन सास ते राखे
0: रब भावे ता हर गुण पाखे
1: रब भावे ता पथ उधारे
0: आप करे अपन विचारे
1: दोहा सरिया का आप स्वामी
0: खेले से अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि और न आवे
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे
0: ज्योत भावे सोई करावे
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले
0: ज्योत भावे सोई करे
1: मन जानत बिखिया मह रचे
0: जे जानते अपने आप बचे
1: भरमे भूला दह दिस धावे
0: नमक माहे चार कुंठ फिर आवे
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: छिनवे नीच कीट को राज
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज
1: जाका दृष्ट कछु न आवे
0: जिस तत्काल दर दिस प्रगट आवे
1: जाको अपनी करे बख्शीस
0: ताका लेखा न गण जग
1: जीओ पिंड सब तिसकी रास
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीव देख बढ़ाई
1: इसका बल नाही इस हाथ
0: कल करावन सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जीओ
0: ज्योत सभाव है सोई फन थी
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बस है
0: अब हूँ सोग हर करंग हस है
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार
0: अब हूँ उपकाश प्याल
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: अब हूँ नृत्य करे बहुभांत
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात
1: अब हूँ महाक्रोध विकराल
0: अब हूँ सर्व की होतरवाल
1: अब हूँ होए बह बड़ राजा
0: कभू भिखारी नीच का साजा
1: कभू अब कीर्त में आवे
0: कभू भला भला कहावे
1: ज्यों प्रभु राखे ते भी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: कभू होए पंडित करे बख्यान
0: कभू मौन धारी लावे ध्यान
1: कभू तट तीर्थ स्नान
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कभू पीठ हस्त पतंग होए दिया
0: अनक जौन परमे परमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे
0: जो प्रभु भावे तवे न जावे
1: जो भावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: कभू साध संग ते पावे
0: उस स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसे पर ब्रह्म के संग
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए विश्राम
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: आप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन प्रभावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नानक ही हां मुक्ति आ गया सुख पावे
1: धनवंत हो कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: किसे न बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना न कहा छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ कर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: सब ते दूर सब हूं कै संग
1: उदय देख करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आपे
0: रचिया सब के साथ
1: आप पीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: कोसते भिन्न कहो किस होए
0: हाथ अंतर एकै सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घटघट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिक न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरै
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिल लाए
0: जो जल बे हुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापै
1: संत का दुखी छुटै अकेला
0: जो बवार तिर खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाई है
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाई है
1: संत के दुखी की पूजा ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न त्रिष्टै कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटै कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहु दिन रात
0: तिसे त्याहु सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ,
0: ਜੀਵਨ ਪਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ,
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ,
0: ਪਉ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ,
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ,
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ,
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ,
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ,
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ,
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ,
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ,
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ,
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ,
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ,
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ,
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ,
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ,
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ,
1: ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ,
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ,
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ,
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ,
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ,
0: ਏਤੋ ਤਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ,
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ,
0: ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ,
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ,
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ,
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ,
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ,
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ,
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ,
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸਾ,
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ,
0: ਨਾਨਕ ਪਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ,
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ,
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ,
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ,
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ,
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ,
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ,
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ,
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ,
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ,
1: ਮੈਂ ਤਿਸ ਜਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਤਿਸ ਮਰੈ,
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ,
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ,
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ,
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ,
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ,
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ,
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ,
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ,
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ,
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ,
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ,
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ,
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ,
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ,
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ,
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ,
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ,
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ,
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ,
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ,
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ,
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ,
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ,
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ,
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ,
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗੁਰ ਪੈ
0: ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀ ਆਦਰ ਪੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਤਾਰ
0: ਇਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਬਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਮ ਚੜਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਖਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਰ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਡਾਕਟਰ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਦ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਸਾਜ ਬਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਵਰ ਹਾਰ
1: ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅੰਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ
0: ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮਰ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤ ਹੰਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵੱਲ ਨਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇ ਵਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਭ ਤੇ ਉਜ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਕੋ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਕ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਤਿਸੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਖੰਡ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪਮਤ ਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਈ
0: ਜਨਮ ਰੈਫਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਪੂਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਰੱਬ ਬਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਥਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇ ਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਭਜਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੁਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸੈ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਰੱਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਬੇ ਸੱਚ नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत ध्यानहार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुण कारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: बुजनहार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजाय ते समाहे समान
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: आपका सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समारै
1: अपने जन का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को दे वडाई
0: अपने सेवक को नाम
1: अपने सेवक की आप पत रखे
0: आपकी कदमत कोई न लख है
1: आपके सेवक को न पहुँचे
0: आपके सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख है
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारा न रख है अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडानी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: प्रत्ये मन तन तरपी है
1: नाम जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर ना ही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: ऊर्त बैठ सोबत नाम
0: कहो नानक जन कैसद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन की नींदा
1: करे भक्ति आत्म कह चाय
0: रब अपने से रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जान
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पाव है
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान को सगली छाट
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
1: सतगुर सिख की करे प्रतपाल
0: सेवक औगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिर
0: गुर बचनी हर नाम उचर
1: सतगुर सिख के बंधन काट
0: गुर का सिख बकार ते हट
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कश न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचा सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो इने कामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्व गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ
0: अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश परम
1: सह सियान पुलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: अर्षत चरण गत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपति आने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कह हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भावे तिस लय मिलाए
1: देवाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काहू बोल न पहुंचत पुरानी
0: आत्मा गोचर प्रभु निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकी कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस प्रसादा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टेक गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम बहु दुख ते नासे
1: सत माही ठांड वरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: हो चुका निरपव होए बसै
0: सगल व्याध मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चूके भ्रम गमन
0: सुन नानक हर हर दस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होहि
0: कला धार जिन सगली मोहि
1: अपने जगत प्रभु आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चले बिन भजन दिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमर नाम आधार,
1: अवरो पाप स्वामीत पसारो,
0: शर्म कमल विद मैं उरतार,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गहो नाम हर वंत,
1: एहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस सोपा को करे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटै हर अवखत लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्ताप ते आवै ठाए,
1: पांको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसै हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: हो बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसै अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटै प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यो रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मन वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थिर रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: हस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू लेह एयाने,
0: भगत बिना भव डूबे सियाने,
1: भगत की भगत करहु मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल विख जाहे,
1: आप जपो अवरा नाम जपावो,
0: संत कहत रहत गत पावो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भय नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: दर्श जाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सच तना,
1: हर पूंजी संज करहो व्यवहार,
0: यहां सब दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: कहो नानक जाकै मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाहे,
0: एक सिमर एको मन आहे,
1: एक सके गुण गाओ अनंत,
0: मंत्र जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक आराध प्रास्त गए,
1: मन तन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करिया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कर कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभु की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभु सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साधक संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अमदिन निवलाग,
1: बट भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुरु दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच्छपुन्नी श्रद्धा सब पूरी,
0: रब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सोक्यों बिसरै जे भाव न भानै,
0: सोक्यों बिसरै जे किया जानै,
1: सोक्यों बिसरै जे सब कुछ दिया,
0: सोक्यों बिसरै जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरै जे अगन मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लखै,
1: सोक्यों बिसरै जे बिख ते काटै,
0: जनो जनो का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरै तत एह बुझाया,
0: रब अपना नानक जन ध्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरै नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिया संसार,
0: भगती धन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों देख दर सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दीजै कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: रब बख्शंत दीन दयाल,
0: भगत बछल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आदि पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होए पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बढ़ियाई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी सो पा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक परगास, श्लोक
1: स्वर्गुण निर्गुण निरंकार,
0: सुन समाधि आप, आपन किया नानका, आप ही फिर जाप, अष्टपदी
1: जब अकार एहो कछ ना दिष्टेता,
0: आपन तब कहते हो अवतार।
1: जब धारी आपन सुन समात,
0: वैर विरोध के संग कमात।
1: जब इसका वर्ण चिन्ह जापत,
0: तब हरक सोगो कसै व्यापत।
1: जब आपन आप आप आर ब्रह्म,
0: मोह कहा किस होवत भरम।
1: आपन खेल आप वर्ती जा,
0: नानक करने हार न दूजा।
1: जब होवत प्रभ केवल धनी,
0: तब बंद मुगत कहो किस कहो गनी।
1: जब एक ही हर अगम अपार,
0: तब नरक सुरक कहो कौन अवतार।
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाई,
0: तब शिव शक्त कहो गित ठाए।
1: जब आप ही आप अपनी ज्योत धरे,
0: तब कवन निडर कवन कत डरे।
1: आपन चलित आप करने हार,
0: नानक ठाकुर एक में पार।
1: अवनाशी सुख आपन आसन,
0: जन्म मरण कहो कहा विनाशन।
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए,
0: तब जमकी त्रास कहो किस होए।
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा।
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
1: आपन आप ही अचरजा,
0: नानक अपन रूप आप ही उपरजा।
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता,
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता।
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन कमान कौन अपमान।
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय शल छिद्र लगत कौ कीस।
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
0: जय किसै भूख कवन तृप्तावे।
1: करन करावन करने हार,
0: नानक करते का नहि समार।
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई।
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण,
0: जय वेद देव कहाँ को चीन।
1: जब अपन आप उतार है,
0: शगन अपशगन कहाँ विचार है।
1: जय आपन ऊंच आपन आप नेरा,
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा।
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद,
0: नानक अपनी गत जान हो आप।
1: जय छल अशेद अभेद समाया,
0: वहाँ कसे व्यापत माया।
1: आप उसको आप ही आदेश,
0: निर्गुण का ना ही प्रवेश।
1: जय एक एक एक भगवंता,
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता।
1: जय आपन आप पतियारा,
0: जय कौन कथे कौन सुनने हारा।
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा,
0: नानक आप उसको आपे पहुंचा।
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार,
0: निर्गुण मैं कीनो विस्तार।
1: पाप पुण्य तह पही कहावत,
0: ओ नरक को स्वर्ग विषावत।
1: काल जाल माया जंजाल,
0: मैं मोह परम पै भार।
1: दुख सुख मान अपमान,
0: अनक प्रकार की उपख्यान।
1: आपन खेल आप कर देख है,
0: खेल संकोच तो नानक एक।
1: जय अवगत भगत तह आप,
0: जय पसरे पसार संत प्रताप।
1: तू पाप का आप ही धनी,
0: उनकी शोभा उन्हों बनी।
1: आप ही कौतक करे अनंत जोज,
0: आप ही रस भोगन निर्जोज।
1: जिस भावे तिस आपन नाई लावे,
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे।
1: बेशुमार अथाह अगंत अतुल,
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार,
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार। अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार,
0: आपे एक आप विस्तार।
1: जांत स्पावे तां श्रेष्ठ उपाय,
0: अपने भाणे लय समाये।
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए,
0: आपन सूत सब जगत परोए।
1: जा को प्राप्ति आप बुझाए,
0: सच नाम सोई जन पाए।
1: सो समदर्शी तत् का बेता,
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता।
1: जी जंत्र सब तां कै हाथ,
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ।
1: जिस राखे तिस कोइ न मारे,
0: सो मुह आज समनो बिसारे।
1: तिस सच अवर कहां को जाए,
0: सब सिर एक निरंजन राय।
1: की जुगत जा कै सब हाथ,
0: अंतर बाहर जान साथ।
1: गुण निधान बेअंत अपार,
0: नानक दास सदा बलहार।
1: पूर्ण पूर रहे दयाल,
0: सब पर होवत कृपा।
1: अपने कर्तव्य जाने आप,
0: अंतर जामी रहो व्याप।
1: प्रत पाले जी अनुभव भांत,
0: जो जो रचियो सो तिसै ध्यात।
1: जिस भावे तिस लय मिलाए,
0: भगत करे हर के गुण गाए।
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया,
0: करन हार नानक एक जाने।
1: जन लागा हर एक कै नाई,
0: जिसकी आस न पृथ्वी जाए।
1: सेवक को सेवा बन आई,
0: हुकम बोझ परम पद पाए।
1: इससे ऊपर नहीं भी
0: जाके मन बसया निरंकार,
1: बंधन तोर भय निर्वैर।
0: हर दिन पूजा गुर के पैर,
1: ए लोक सुखी परलोक सुहेले।
0: नानक हर प्रभ आपे मेले,
1: साथ संग मिल करो आनंद।
0: उनका वो प्रभ परमानंद,
1: राम नाम तत् करो विचार।
0: दुर्लभ देखा करो उधार,
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ।
0: प्राण तरन का यह स्वभाव,
1: आठ पैर प्रभ को नेरा।
0: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
1: सुन उपदेश हृदय बसावो।
0: मन इच्छे नानक फल पावो,
1: हलत पलत दो लेहो सवार।
0: राम नाम अंतर उतार,
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया।
0: बसे ते साच परीखिया,
1: मंत्र नाम जपो ले बलाए।
0: दुख दर्द मन ते पहो जाए,
1: सच व्यापार करो व्यापारी।
0: दरगह निध है खेप तुम्हारी,
1: एक टेक रखो मन माहे।
0: नानक बहुर न आवे जाहे,
1: इससे दूर कहाँ को जाए।
0: उबरे राखन हार ते आए,
1: निर पहो जपे सकल पहो मिटे।
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे,
1: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख।
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाई मिटे हंकार।
0: तिस जन को कोई न पहुंचन हार,
1: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा।
0: नानक ताके कार्ज पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट।
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
1: चरण कमल जाके अनूप।
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: भान सेवा सेवक परवान।
0: अंतर जामी पुरख प्रधान,
1: जिस मन बसे सुहोत निहाल।
0: ताके निकट न आवत काल,
1: अमर भये अमरा पद पाया।
0: साध संग नानक हर ध्याया। श्लोक
1: ज्ञान निरंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
0: हर कृपा ते संत भेटिया, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੀ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਐ ਚਰਨ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਮ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਮਨ ਦਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੀ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੀ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਡੋਲੈ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਾਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੈ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀ ਹੋਈ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਇਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣੇ ਆਪੇ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨਿਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਰਹਿ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
1: ਜਿਸੇ ਹੋਈ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤਨੀ ਕੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਪੋਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਚ
1: ਸਾਕੀ ਗਰਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੋਏ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
1: ਜਾਣੇ ਅਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
0: ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚ ਤਿਆਵੈ ਨਾਮ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ
0: ਨਾਮ

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चित्त हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: संत कमाप्त होत उदहार
0: आप त्रैलोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजै
1: रखे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: आज जाल विकास के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक रही खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन के मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत के मन बसराम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत तांती बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊज ताकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सबते

भोग वायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहाँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो। काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस नुआयो। को बतानक पूजत है पास कोमर तानक पूजन धायो। कूर क्रिया और ज्यों सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो। को बतानक पूजत है पास कोमर तानक पूजन धायो। कूर क्रिया और ज्यों सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दया रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहै हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो। आप हाथ दया मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दया करिय सब बैरन को आज संगरिय। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं जो अवर चाहौ सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया हे चुन चुन सत्र हमारे मारिया हे। आप हास दया मुझै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करिय हो रच्छा। राख लिहो मोहि राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बांध दुष्टन के हंता तुमहो पुरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिस्न प्रकाशा सकल काल का किया तमासा।

सब जगत बनायो देव दया जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजाजन आप सुवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को परमो बाध कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर या सूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उद करह करा करतारा प्रजा तत तब देह अपारा जब या करह करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार नृभ कार लंब वाद अनिल अनाद असंभ

महादेव कौ कहत सदा से निरंकार का चिन्हत न भेव। आप ही अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहि तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जेरज सिद किन्नी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एक ऐठा सगरी सृष्ट दिखाया चम भाव आज जुगाद स्वरूप स्वयं भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठ वत उत्पाता सकल मलेश करो रणघाता जे आस तुह तब सरणी परे तनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जावन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शा

सब सुवारणा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो जिस दी आए वढाईया कह नानक सुनो संत हो सब धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुहर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे साची लिवै बेन देहन माणी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया ए सनाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल वेह कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानके हो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे बेचारिया एक भरम भूले फिर दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आव हो संत प्यारे हो अकाथ की करह कहानी अकाथ केरी केत द्वारे पाईए तन मन धन सब साफ गुरु का हुक्म मन्या पाईया हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरे आए माया मोहनी जिन एत परम भुलाया माया ता मोहनी इतना कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तसै विट्टा हो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया हे

मरण मनहो वे सारिया, वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहे नाही, फिर हे ज्यो बेतालिया, कह नानक जिन सज तजिया, कूड़े लागे तनी जन्म जूवै हारिया। जी हंदरमल बाहर हंदरमल, बाहर हतांदरमल जी हंदरमल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुचा नाही, मनसा सच समाणी। जन मरतन जिने खटिया, भले सेवन जारे, कह नानक जन मन निर्मल, सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जी अहो रह गुर नाले। गुर के चरण हृदय ते आए, अंतर आत्मा समाले, आप छड सदा रह परना, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनहो संत हो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सतगुर मुगत न पावै, पावै मुगत न होर थै कोई, पुछह बिबेकिया जाए, अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुगत न पाए, फिर मुगत पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखा हो, बिन सतगुर मुगत न पाए। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाव हो सच्ची बाणी, बाणी ता गाव हो गुरु केरी, बाणी आ सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै, हृदय तना समाणी, पीवहि अमृत सदा रह हो हर रंग, जपिहो सारग पाणी, कह नानक सदा गाव हो एहो सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु वाज हो, होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आँख बखाणी, हर हर नित करहे रसना, कहया कछु न जानी। चेत जिनका हिर लया माया, बोलन पै रवाणी, कह नानक सतगुरु वाज हो, होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ, शब्द सेती मन मिलिया, सच्चै लाया भाओ, आपे हीरा रतन आप।

के कर्म कमाया तो दसरीरा, जा तू जाग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। गुण प्रसादी हर मन ने वसया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर प्रवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोर धरी। हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिना अवर न देखो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो वेस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुरपन साधी बुझिया जा वेका, हर एक है हर बिन अवर न कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचै सुनने नो पठाए। साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनहो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया होवा, रसना रस समाणी। सच अलख विडाणी, ताकि गात कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र होवहो, साचै सुनने नो पठाए। हर

जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दोए है पाए बिगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथै जो लिखे आस रैन विहाणी पशुताणी।

देह बिनससि तित वेलै कहसन प्रेता पकड़ चलायन दूत जाम किसै न देनी भेत छड़।

पौड़ी पड़ा होवे गुनागार ते साधना मारी है जेह काले कालना ते वेहनो पचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगा गया हारी है पड़ा ते मिया विचार अगे विचारी है मोचले सो गया मारी है।

पौड़ी चक्कर लेके चक्री जो चले खस में पाए और मत तुसनू अगली ओ बजे पदुना खाए खस में करे बराबरी फिर गैर तंत्र पाए वजह गवाए अगला मुंह में पाना खाए जिस दे दता खावन तिसका ये सबास नानक हुकम न चले नल खसम चले अरदास नानक हुकम न चले।

रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जाय, कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गिण जाय, त्रिपौन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत।

0: सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Param Sanman Yog Hazur De Amrit Bachananda Anand Man Rahe Guru Sware सत संगी जनों आप जी ने पाट कीर्त साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सर्वन कीता है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहिब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहिब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहिब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साड़ी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। किन्ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहिब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पट कीर्त साहिब जी ने आज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहिब ने कहा नानक नाम निरंजन जानियो धन गुरु नानक साहिब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया किन्नी भगत प्रेम लिबलाई उस परमात्मा दी वाहिगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती तन गुरु नानक साहब जी ने एक मन हो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी की भगती की थी। आरंभता है प्रेमा भगती तो तन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं की थी। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवा जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली बाहर दी भटकना तो बचा सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जिहड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हां, साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थों तक के जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है। प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक एहो जी शक्ति टिका दिती, ऊर्जा टिका दिती, जिहड़ा सूरज नू अपने तो करोड़ा को दी दूरी होने दे बावजूद भी ओदियां किरणां नू देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओ केड़ी ताकत है, ओ केड़ी मिकनाती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नू चिक्कड़ विच खिड़े होए नू पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक के गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोना दी दूरी है। ना तो चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उनू नजर टिका के देख दिए चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करता है पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी का ते उन्हें ये नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लतां नू अपने जिस्म नू कमाना है उदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए। गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं, इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिलखोण सुखाले। हुण इत्थे भावें शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नू पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नू मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं। मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकता, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नू पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं, सकून नहीं, जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे, पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती कीती एक टेक होके, ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा कीती है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, निहो कवल जल जानी है, खेड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन ता ओही है, छप्पड़ टोबा ता ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने, ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों ओहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे, वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर ओहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते, ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया, ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकारन लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने
2: सारियां सतनाम करता पुरखे, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साद न पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणा विच जिहड़ी प्रबल प्यास है, ओह जीवन दी है, सदीवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारियां लोड़ां सारियां मंगां, लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत दा ही है, और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे, समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होने वाला है, या खत्म होने दी संभावना। भय उसे दा ही है चाहत लालसा जीवन दे और परबल भय मौत दा। जे भारत दे सनातन चिंतन नु वेखीए, उपनिषदां दे ऋषियां नु वेखीए, पुराणक प्रसंगां नु देखीए, तो जीवन दा दाता दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश विच विष्णु दी पूजा शिव जी दी पूजा हिंदू जगत दे। विष्णु नाल लक्ष्मी है, जीवन ते जीवन दियां सारियां लोड़ां दी पूर्ति। पर शिवजी दे गले विच ते फनियर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिवजी दा वह सेवा है, मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है, जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल पदार्थां नाल संबंधित है, एक प्रतीक है। लालसा परबल जीवन दी है, भय परबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बनया रहे बनया रहे बनया रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साडे घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साडे घर आ, क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दे, क्योंकि तेरे गले विच सप्प ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है, और तेरा वसेबा शमशान दा है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुने है। मनुख दी कमजोरियां नू खूब समझे है ते नापिया गया है। लालसा जीवन दी है और भय केवल मौत दा है। मनुख कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, जे जुग चारे आर जा होर बसोनी हो रहे। जे किधरे उम्र चार जुगां दी हो जाए, लखों साल दी हो जाए, तो फिर होर दस गुणा वध हो जाए, होर दसोनी होए। सिर्फ जीवन ही इतना लंबा ना होवे, नवा खंडां विच जाणीए नाल चले सब को। नौ खंड पृथ्वी दे पूजा ते प्रतिष्ठा होवे, प्रतिभाशाली होवे, जाणिया जाए, समझिया जाए, पूजिया जाए, सत्कार लई सारे प्रतिष्ठित लोग नाल चलन ते सन्मान देन। महाराज ने मनुख दी इस मंग नो बड़े सोहने ढंग नाल समझे ते बयान कीता है। नवा खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखा।

जो परमात्मा दी निगाह दे थले नहीं आया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल लंबे जीवन दी लालसा ते भय मौत दा बस इन्हां ही दोहां उलझना दे मनुख दा जीवन बतीत होंदा है और बार बार बतीत होंदा है, बार बार जमदा है जीवन दी लालसा ते मरण दे भय दे एक दिन मर जांदा है, खत्म हो जांदा है। आद काल तो मनुख दी तलाश रही है अमृत दी, अमृत मृत्यु तो रहे जिस विच मौत नहीं, कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा जल, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी सौगात किधरों प्राप्त होवे जिस नाल मौत ना आवे, अमृत जीवन मृत्यु तो रहित हो जाए, जीवन अमृत हो जाए। हर मनुख जीवन में अमृत बनाना चाहता है और हर मनुख ही क्यों, मौत के पशु पक्षियों को भी नहीं चाहिए, उन्होंने अंदर भी भय कि सिर्फ इसे भई है। जीवन की लालसा जीवां दे बड़ी प्रबल दिखाई, प्रबल दिखाई देती, अमृत की चाहत, अमृत की मंग प्रथम मंग है, फिर मोर मंग है, प्रबल मंग है। सतगुरु की बाणी का समान घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साद न पाया ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भ्रम दा भरम भुलाया। वो अमृत दा कुंड इसे जीवन सागर दे अंदर है और इसे जीवन दा रेड़का पाना पड़ेगा। जप तप द्वारा इसे ही अमृत दे कुंभ नो बाहर प्रगट करना पड़ेगा। इस अमृत दे कुंभ नो कोई प्रगट कर सके इहदे लई एक प्रेरणा चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, इसदे लई एक तड़प चाहिए, इसदे लई साधना चाहिए। तो जैसे असी देखते हैं हैंड पंप ना जब गेड़न दे नाल पानी ना निकले उपरों पानी पाते हैं फिर पानी निकलना आरंभ होता है। आदि काल तो महापुरुष कोशिश करते रहने बाहरों अमृत पिलाण दी ताकि अंदर का अमृत प्रगट हो जाए, बाहर आ जाए। एक विधि रही है बाहरों अमृत का संबंध स्थापन करके जीवन दे अंदरों अमृत को प्रगट करना, यह साधना धार्मिक जगत दे आदि काल तो चली आ रही है। आबे हयात अमृत इसकी तलाश आदि काल तो चली आ रही है और यही प्यास मनुख दे प्राणा दे वख वख रहबरी पुरुषां ने अपने ढंग नाल जरूर ऐसा जल जिस विच उन्होंने मंत्र पढ़े, जिस विच उन्होंने अपनी अध्यात्मक तरंगा प्रवेश की थियां, आबे हयात चरणामृत इस तरह की प्रथा बहुत लंबे समय तो चली आ रही है। आबे जमजम कह दी है या चरणामृत कह दी है, इस बहुत पुराने समय तो चले आ रहे हैं। कहने जप तप का असर पानी से बहुत ज्यादा पीता है, पानी सारियां दी प्यास बुझांदा है, पीने दे काम आउंदा है, लेकिन पानी वाइब्रेशन नू अध्यात्मक तरंगा नू खुद पी जांदा है। ऐसा बहुत लंबे समय तो जपीश्वर अध्यात्मी लोग

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण @604581190।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581 1900।

0: तेजे सब्जी भले खाना है
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन
5: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
3: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
6: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.